0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो Pillon chun kere wer kwaro
0: Pillon chun kere wer kwaro
1: Bimara me pachu
0: Bimara me pachu
2: You are long you be do tell ah Loka kamu pene
1: Iti winyo or radio

0: और मैं पाचू
1: इटियो और रेडियो पियम चुनकेरे वेर क्वारो
0: पियम चुनकेरे वेर क्वारो
1: बिमारा मैं पाचू
0: बिमारा मैं पाचू
2: इवान लंग यू बिरो टेला
1: आ लोका कामु और रेडियो
3: Your love is all over my body. Your love knows no amount of money. Your love is all over my body.

0: और मैं पाचू
1: इटी विन्यो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: अलीशान विजुगो
1: मार मैं पाचू इटी विन्यो और रेडियो